माला दोम ने जे जिम दिखा मम्मी का दे माखा हुआ माखा ये दोले ने गिर गिर रहा तारी ने दा कावे दा आसान ने दा मंजा हलम लम गुबेरे दुबारे लिखा माओ माओ कुला तारे ले ले मामा देवी पासा जी